ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton. ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते

0: कई चंद्रे वक्त से न्यो लगा
1: वाह वाह
0: कई चंद्रे वक्त से न्यो लगा सब रस दी बात बेरा सा

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: ते अमीर विरसे दी पुक्कलचों यातां ते संतुरी सफरता हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते पसार ले संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

क्या बात है जी, क्या बात है। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, बाकी जो मेरे को मैसेजेस भी आ गए, कॉल्स है जिहड़ियां अज नहीं स्टूडियो दे विच कोई भी आ रही है, ना एयर ते जा रही ने, ना ही जो मैं सॉफ्टवेयर खोलिया उत्थे तक कॉल पहुंच रही है, वॉइस मेल ते जिहड़ा जा रहा है सीधा फोन। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ तुहाडे जिहड़े मेरे परसनल फोन ते जिहड़े मैसेजेस आ रहे ने, ते तुसी दो कॉल्स भी आई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुसी मैनूं अपडेट कर दिता, क्योंकि मैनूं दस्सिया गया सीगा भी फोन है जिहड़ा अज वर्क नहीं करता पिया। सो मैं क्या चलो कोशिश करके देखदा, मैं सॉफ्टवेयर की मदद लैके देखदा, कई बार टेक्नोलॉजी भी है जी उत्थे फेल हो जाती है। सो चलो फिर अज का विषय जिहड़ा फिर आप दोबारा जिहड़ा इस विषय नूं छेड़ लवांगे, क्योंकि अज किसी भी तरह तुहाडी मेरी गलबात तो हो नहीं सकती। हाँ जी, आफ्टर द प्रोग्राम तुसी मैनूं आ जिहड़े कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम बाबत फीडबैक देनी है। दोस्तों तुहाडा फीडबैक है जी पॉजिटिव होवे, नैगेटिव मेरे सिर मत्थे, क्योंकि मैं इन्हां चार दीवारां दे विच बैठा, तुसी आ जिहड़े मैनूं पता नहीं कित्थे कित्थे सुणदे पए हो, तुहाडी जिहड़ी फीडबैक है मेरे लिए है जिहड़ी बड़ी लाहेवंद है, मैनूं पता चलदा। मैं हमेशा इह कहिंदा मैं ओपन हुंदा हर एक क्रिटिक वास्ते भी, ते बाकी जो तुसी सिफत सलाह करदे हो उहनां दा मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार हां, पर प्रोग्राम दे विच तुहानूं लगे भी इत्थे कुछ कमी हैगी है, इहदे ते होर सुधार कीता जा सकदा, डू कॉल मी आफ्टर द प्रोग्राम कर लिया करो, भावें एयर ते कर लिया करो, मेरा तो खुला ही है, जिदा तुसी कहोगे मैं तो उस तरह प्रोग्राम की रूपरेखा जी चेंज करता रहना, थोड़े थोड़े जिदा थोड़े सुझाव आते रहेंगे। एक मैनू पता उहदे ते मेरे तो हजे थोड़ा जिहा वर्क नहीं होया, भी जिहड़ी स्टार्टिंग दी इंट्रो है उहनूं घटाया जावे, उहनूं छोटा कीता जावे। सो मैं उहदे ते जरूर जिहड़ा काम करांगा, मैं उह समझदा आ, उह मेरी भी थोड़ा जिहा हैगा आ भी उहदे ते, क्योंकि उह मैनूं थोड़ा जिहा टाइम तां चाहीदा हुंदा क्योंकि उस वक्त ना थोड़ियां हैडलाइनस है जिहड़ियां उह अपडेट हुंदियां ने, सो उह समां 5:02-3 ते कुझ कु हैडलाइनस अपडेट हुंदियां ने, सो इस करके मैं उह थोड़ा जिहा समां अपने लई रख्या हुंदा जे कोई तुहाडे तक कोई अपडेट आवे। अज दो कु खबरां मैं जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां 5:07 ते अपडेट होईयां ने, सो इस करके मैं थोड़ा जिहा समां रखदा, पर चोई ना कोई होर वे है जिहड़ा मैं रख लवांगा, स्टार्टिंग छोटी करके विचकार है जिहड़ा थोड़ा अपने आप नूं समां दे दिया करांगा, ते जे कोई हैडलाइन आउंदी है उदों शेयर कर दिया करांगा, इस तरह कर लांगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत, हसदे ही रहिंदे आ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਤਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਫ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਸਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜੁਖ ਸੁੱਖ ਜੱਸਲ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਨੈਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਜੱਸਲ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਨੈਟ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਫ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਨੈਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜੱਸਲ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5198356079 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਸੇਮ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ, ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਕਦੋਂ ਹੈ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਐਤਵਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੇਮ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਹਰਮਨ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
हैप्पी बर्थडे टू इंद्रजीत पठल, गॉड ब्लैस हिम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फैमिली, वेरी नाइस सॉन्ग। थैंक यू जी, थैंक यू भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उधर बिट्टू भाजी हूँ का भी मैसेज आया, कहते मेरी विशेष है जी रम्मी नू पास करियो। सुख जसल भाजी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरमीत जी कहते भाजी फोन नहीं चल रहा। हाँ जी बिल्कुल जी, फोन अज चल नहीं रहा, मैं माफ़ी चाहवागा। 62 88 तो आया जी, फोन नॉट वर्किंग। हाँ जी हाँ जी, फोन भाजी वर्क नहीं कर रहा, मैं माफ़ी चाहागा। अज सो इसे करके जिहड़ा विशा इहदे ते मैं तुहाडी कॉल्स नहीं लै सकिया, पर मैनू पता है विषय के उत्ते बहुत सारिया साडे सारियां दीआं जिहड़ियां यादां ने उह जुड़ियां हुंदियां ने। आफ्टर प्रोग्राम तुसीं मेरे नाल संपर्क कर लियो, रियल स्टेट बाबत कोई गल करना चाहते हो, जां फिर तुसीं आ जिहड़ा बच्चों की आर ई एस पी नहीं करवाई तो जरूर करवा लो। मैं तुहाडे नाल अज एक रिपोर्ट सांझी कीती है, बच्चों ते कदों स्ट्रैस देना, उहनां दी जिम्मेवारी साडी है। हाँ जी, सो इस करके जे आपां पूरी तरह फाइनैशियल टूल्स का सही तरह इस्तेमाल करांगे तां फिर बच्चों भी सौख होवेगी ते सानू भी सौख होगी, ते ओ बच्चे आ जिहड़े अपनी मनपसंद की पढ़ाई है जिहड़ी पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन आ जिहड़ी हो कर सकनगे। सो दोस्तों प्रोग्राम दे हिस्से नूं आ जिहड़ा स्पोंसर किया जा रहा प्रो वन ट्रक रिपेयर एंड टायरस। कोई एनुअल सेफ्टी एमिशन टैसट कराना चाहते हो, जिन्हें भी साढ़े स्पोंसर ने जो भी तुसीं इन्हां कोल जाने हो ते रेफरेंस के तौर पर आ जिहड़ा सर्जरी सवेर विद शम्मी पठल नाम है जिहड़ा जरूर लै दिया करो, ताकि उन्होंने पता चल जाता। तो बाकी है जिहड़ा साड़ी है जिहड़े जिन्हें भी साढ़े स्पोंसर है उन्होंने नाल एक सांझ हुई है, कुछ ना कुछ है जिहड़ा जो तुसीं आम सर्विस देने हो वह तो कुछ ना कुछ है जिहड़ा होर डिस्काउंट है जिहड़ा जिन्हें भी साढ़े लिसनर्स परिवार पहुँचते हैं सानू सुन के उन्होंने जरूर दो। सो प्रो वन ट्रक रिपेयर एंड टायरस ये भी कहें जे तुसीं आ जिहड़ा सर्जरी सवेर में सुन के उत्थे जाओगे तो जिहड़ी एक कॉम्प्लीमेंटरी PM इंस्पैक्शन होंदी है जिहड़ी वह फ्री दिती जाएगी, कॉम्प्लीमेंटरी दिती जाएगी। कोई तुसी ट्रांसमिशन डैफ है जिहड़ा रीबिल्ट कराना चाहते हो, कई बार बंक हीटर्स इंस्टॉल कराने स्पैशलाइज करते हैं कार हॉलरस दे विच, जिहड़े गड्डियां ढोंदे ने ट्रक ट्रेलर उन्हां दे विच तां इन्हां दी स्पैशलिटी है, बाकी होरां ट्रकां ट्रेलरां दा भी काम करदे पर उन्हां दे विच बहुत घट इहो जिहे शॉप्स ने जिहड़ियां उन्हां दे विच स्पैशल टी है जी रखदियां ने। सो उन्होंने एक नाम प्रो वन ट्रक रिपेयर एंड टायरस एन ध्रुव तारे वगू यह चमकदार नाम लगातार कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जितते आ रहे हैं। सो तुम सरदार गुरप्रीत सिंह जी तो उन्होंने टीम के नाल संपर्क कर सकते हो 519-490 कार्ड 519-400-9061 या फिर 14 मैंसवुड कोर्ट मिल्टन विखे है जो इन्हों विजिट है जो वह कर सकते हो। बाकी दंदा की सामभ संभाल बहुत जरूरी है, जिन्ना मर्जी भज दौड़ लो, शरीर है ठीक है, हैल्थ इज वैल्थ, बड़ा सियाणिया ने नाप तोल के इन्हां शब्दां नूं साडी झोली दे विच पाया, पर असी कई बार घौल कर लैने हैं। सो दोस्तों दंदां दी मसूड़ियां दी संभाल है जिहड़ी जरूर रखो, नहीं तां फिर कहिंदे ना दंद गए स्वाद गया, उदा जीव गए जीव ही हुंदा आ सियाणिया ने कहा। इस करके दंदा की संभाल जरूर रखो, प्रोफेसनल क्लीनिंग कराओ, तो कई जड़े यहोजे टिप्स ने जो थोड़े दंदा की मसूड़िया की लाइफ है जी बड़ी लंबी कर देंगे ने। सो तुसी स्माइल्स ऑन व्हील्स दे बलबीर कौर जी होना दे नाल संपर्क कर सकते हो, सारी ही इंश्योरेंस कंपनियां दे नाल काम करते हैं। कमाल की खासियत यह है तुहानू डेंटल कोल नहीं जाना पैंदा, समा डेंटल तुहाडे कोल तुहाडे दरां दे विच पहुँचदे ने। हाँ जी, सो बलबीर कौर जी उन्हां को अपना मोबाइल ट्रक है, जे तुसी इन्हां दे ट्रक दे विच बैठ के कराणी सर्विस लैनी है ते ओह कर सकदे हो, जां फिर तुसी घर दे विच वी आ जिहड़ा इह एंटर करके आ जिहड़ा कई जिहड़े बजुर्ग हुंदे आ नहीं चल सकदे तुर फिरन तों असमर्थ ने उन्हां दी दंदां दी जिहड़ी सांभ संभाल करदे ने। बाकी तुहानू कम्यूट दे विच औख है कहिंदे नो प्रॉब्लम, तुसी कॉल इक करनी आ असी आप ही डेंटल ट्रक लै के तुहाडे वेड़े आ जाना। सो स्माइल्स ऑन व्हील्स दे बलबीर कौर जी होना दे नाल संपर्क करने वास्ते नंबर 6479690008 ते जिहड़ा दोस्तों संपर्क कर सकते हो। जे तुहानू लगता कई बार नंबर नहीं लगता पिया किसी स्पोंसर दा तो तुसी मेरे कोलों कॉल लैके एक अल्टरनेटिव नंबर भी है जिहड़ा उह तुसी लै सकते हो। भंगड़ा गिद्धा, हाँ जी, हसना खेडना मन का चाओ, तुसी जिहड़ा भंगड़ा गिद्धा जिहड़ा पाना चाहते हो एक एक्टिविटी के तौर पर जां फिर अपने बच्चों नूं पाना चाहते हो, जिथे वह सभ्याचार अमीर विरसे दे नाल जुड़ते हैं तो उत्थे दे जिहड़े इंस्ट्रक्टर्स ने वो तुहाडे बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं पढ़ाई के मामले दे विच जां फिर होर करियर के मामले दे विच। सो इहो जी इह जगह आ, सो तुसी दा भंगड़ा अकैडमी के हरजोत होना दे नाल संपर्क कर सकते हो। तो नंबर है 647-507-7672
6475077672 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ।

0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: दुआबा ट्रैवल एंड टूर, पाकिस्तान जाना, इंडिया जाना, दिल्ली दिया फ्लाइटा नाल हुण अमृतसर दिया फ्लाइटा दे विच वी थोनू हेल्प कर रहे ने दुआबा ट्रैवल। टॉप दी सर्विस, टिकट लैंड तो थोड़े वापस आने तक सर्विस पूरी मिलेगी। टॉप दी प्राइस, दुआबा ट्रैवल 905-796-7800 905-796-7800। दुआबा ट्रैवल एंड टूर नु तुसी जरूर कॉल करो।

एम फैक्टर के दाल देते रिवाज डिजिटल फ्रिक्वेंसी आकाशवाणी दे लहरा विच मैं हां अमरदीप सिंह बेनीपाल आप सब दे नाल खूबसूरत सवेर एक सुरमई सवेर जिंदगी दे बराक वर्गी अलादीन दे चिराग वर्गी जिवें संघणे बुड़ां दी छां जिवें मोह विच डुब्बी मां ठंड वर्गी खंड वर्गी दोस्ती दे सच वर्गी खुशी ना भरेगा गच वर्गी मेरी सच गल एक बार फिर तो प्रवान करोंगे और सिलसिले वल चलते हैं तो 905-673-3337 टैक्स मैसेज तो कॉल्स लई बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।

0: स्टेप प्लान कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले अब जी कॉल करो 416-518-3200
1: 416-518-3200 Tawa Kitchen 50 Sunnyvale Gate Brampton Mountain Ash and Beverdam Intersection या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWA Kitchen.ca

0: and Cellular Point present AmiWeb live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chonki. September 4th at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hu ki ye sham music aur bhakti se bhari hogi. Hum is din ko Janmashtami celebration kar rahe hain. Aur main aapko ek request karta hu ki sabne apni family ke saath, doston ke saath, jitne bhi aapke close hai, sabke saath aana hai. So guys, see you on 4th September.
2: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स. वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 इयर्स एक्सपीरियंस. वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704.
3: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK Mover.
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी. ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी. हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 MacWin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

आई रियली लव दिस सॉन्ग। पता नहीं इस गीत दे विच, इस म्यूजिक दे विच, गीत दे लफ्ज़ां दे विच, गीत दे लिरिक्स दे विच कैसी हेरा फेरी हो गई है लफ्ज़ां दी। दिल करदा बस सुनी जाइए सुनी जाइए सुनी जाइए।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दिया टिकटा चाहिदिया सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दिया टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया मिल जानगिया
1: बिल्कुल मिल जानगिया दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदिया ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32-55-80
2: 98 एकी गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूत तुहाडे लई पेश किया जाएगा। सुखी निजर ते किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करनगे। मनप्रीत जी हिंदुस्तान तो खबर पेश करनगे। 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर ने 905-799-0999 905-799-0999। छतरी छत का रिपोर्ट हाजिर है। 6:26 सूरज आया, 8:16 दे चले जाना। मामा चंद सिंह अगे चल के 2:22 आएगा, रात नूं 11:14 ते चले जाना। अज दा तापमान 28 डिग्री तक जाएगा, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, हल्की जी बारिश पेगी। कल नूं 27 डिग्री सूरज चमकेगा। फ्राइडे नूं 28 डिग्री सूरज ते बदलवाई रहेगी। सैटरडे नूं 26 डिग्री चखड़ झोले थंडरस्टॉर्म मीं हेरी सब कुछ आएगा। संडे नूं सारा दिन छतरी छतां दी लोड़ पेगी, बारिश पैंदी रहेगी, बदलवाई रहेगी। और सोमवार नूं जाके तापमान 25 डिग्री ते सूरज चमकेगा। जिहड़ा युद्ध चल रहा ईरान कोले अंदर खाते का जो है ही है, कहिंदे जी न्यूक्लियर बंब क्यों बना रहा। उधर खबरां आ रही ने टना दे टन जिहड़ा न्यूक्लियर मटीरियल है वह लभ्या सीरिया के अंदर। और अपना डोनल्ड ट्रंप कह रहा जिहड़ा हरमोज है ये अमेरिका का हिस्सा है। उधर ईरान वाले कहिंदे एवें ना सुपने जे लई चल, उन्ना चेर असीं हरमोज नूं खोलना नहीं जिन्ना चेर यूएसए साडियां डिमांड नहीं मानता। एक रिपोर्ट के मुताबिक दसिया जा रहा पहले 6 महीनों 579 कैनेडियन रेस्टोरेंट आ जिहड़े बंद होए ने, क्योंकि ग्रोसरी दीआं जिहड़ीआं प्राइज़ां उपर आ, ते जे तुसीं मेन्यू दी प्राइज़ वधाउंदे हो उपर ओह ठीक नहीं हुंदी, फिर गल नहीं बणदी हैगी, फिर गाहक आ ओह नहीं आउंदे। वैसे छोले भटूरे कोई 299-399 ला रहे आ, इन्हां ने बंद ही होना रेस्टोरेंटां ने। एक छोले भटूरे की प्लेट आ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ $5.45 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 299 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ $8.00 और अज होगी किन्नी तरीक होगी जी, अज होगी 19। कल नूं क्विक ट्रक लूप दी जिहड़ी फोर्ट एरी वाली लोकेशन है उत्थे ट्रकां दा ऑयल चेंज कराओ, $100 ऑफ मिलेगा। एंड क्वालिटी दा ऑयल यूज करदे ने, फ्री बारबीक्यू होएगा, फ्री ट्रक ग्रीस होएगा। कल दा दिन है, फोर्ट एरी जिहड़ी लोकेशन है उत्थे हो रहा है। कस्टमर दा धन्नवाद करदे ने क्विक ट्रक लूप सेंटर वाले।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vichon Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichon puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
2: Aaj khush to baat ho gaya
3: oh ta hona hi hai jadon tino video da no freezing no buffering ala 4K ultra high quality IPTV box hove tai lagda banda hi hai
2: aaj mere paas bill hai property hai bank balance hai bangla hai gaadi hai
3: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
4: ਚਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
3: ਓ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
5: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
3: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
8: लिसन लाइव बचनो दो रेडियो विद सुखी निजर।

0: नागपाल साहब सरल आ गया। नागपाल साहब एक बार फिर तो जी आए नो सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अभी जिम्मे पहला सिमरन टीम मैंबर ने उन्होंने गलबात करके हटे सी ते पुछ रहे सी कि किस तरीके दे नाल जिहड़े लोग लाहा लै सकदे आ ते लै रहे आ एनरोलमेंट हो रही है ते मेन वड्डी गल ए आ कि उहदे विच तुसी इत्थे बैठे हो तुसी ट्रक चलाउंदे हो अमेरिका जांदे हो इंडिया भी गए हुए हो तां भी ये लोन तुसी लै सकदे हो। क्लासेस तां ऑनलाइन लाउणियां ने तुसी ऑनलाइन क्लासेस लाओ ते पेपर भी है नहीं कहते फाइनल बाद तुसी सिर्फ असाइनमेंटा देनियां ने।
1: बिल्कुल जी एंड एक तीर दो निशान में आप स्किल भी डेवलप कर रहे हैं लोन भी 50,000 से लेके 1,70,000 का आप लोग हासिल करते हैं। पीछे ना रहो आपके आस पड़ोस वाले सब अप्लाई कर चुके हैं उनके खाते में लोन आ चुके हैं कहीं भी आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चाहे ग्रोसरी करें चाहे बैक होम भेजें चाहे इन्वेस्ट करें देयर इज नो कैच इन इट। बैंक आपको लोन देता है यहाँ पे आपको स्किल फ्री में मिल रही है गवर्नमेंट से डायरेक्ट।
0: ये चीज़ का फायदा यह आ कि तुसी ये नहीं है कि पहला तुहाडे कोल आउणे आ फिर तुसी देणे इन्हां नूं ते ये जिन्हें अप्लाई किया उहदा अकाउंट अटैच होगा उहनूं सीधे डायरैक्ट गवर्नमेंट के खाते दे विचों उहदे खाते दे विच जाणा तुहाडा लैणा देणा विचों उहदे है नहीं गा तुहानूं फीस तां बंदे ने अपने कोलों बाद च पे करनी है इदां ही आ।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल साफ काम साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं और कागज भी असली लगते हैं इसमें कोई नकली कागज भी नहीं बनता और नकली कागज नहीं लगता तो कोई फीस भी नहीं है फीस मतलब कमीशन झोल वाला काम है नहीं साफ काम है हम कोई और काम करते ही नहीं जिसमें झोल होता है जिसमें कागज हिलते हैं साफ काम साफ तरीके से ले फंडिंग 50,000 से 1,70,000 की हासिल करें कोई इसमें क्या कहते हैं एज लिमिट नहीं है और आप आसान से पूरी ऑनलाइन कोर्सेज है एग्जाम्स नहीं है इजी असाइनमेंट्स है फंडिंग आपके खाते में आती है। हमारी फीस कितनी है जी $200 कब काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है।
0: अच्छा तुसी 7-8 साल तो इस फील्ड दे विच हो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोलमेंट होके एक एक बार दो दो बार जिहड़े ये लै भी चुके आ सर्टिफिकेशन भी उन्होंने को आ गई आ ऑनलाइन क्लासेज चल भी रही ने अलग अलग बैच भी चल रहे हैं तो असाइनमेंट सिर्फ देनी है तो तुसी दस रहे थे कि जे पेंशन भी बंदा लेंदा वो भी एलिजिबल हैगा।
1: बिल्कुल जी चार्टर ऑफ राइट्स है इस देश में कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई एज लिमिट नहीं है आप चाहे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हैं अनएम्प्लॉयड है हाउसवाइफ है स्किल हासिल करें फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट हासिल करें आसान से सोखे जो कोर्सेज में हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है आज आपको डबल लोन आ रहा है 1,70,000 का फैमिली ऑफ 4-5 को लोन आता है। बच्चे अगर छोटे हैं तो कॉलेज की फीस गवर्नमेंट वैसे ही कवर कर देती है 1.5 लाख आया आपने 1.5 लाख ही वापस करना है 0% ब्याज है 2.5 साल बाद रीपेमेंट स्टार्ट है 2.5 साल बाद भी $1,00,000 पे ब्याज पूरे साल का सिर्फ $2,500 है बताओ $1,00,000 का ब्याज साल का $2,500 सिर्फ।
0: मैंने बंदा मिलया कहना भाई जी वो जो कहना मैं 15-20 साल की गल कहना मैं ना जो आया मैं एडवरटाइजमेंट इतनी सुनी तो कहता वो कहना भी लोन तुम्हें बड़ी छेती लोन मिल जाना कहना मैं उन्होंने कॉल की चलो पैसों की जरूरत से भाई दे दो वह कहते थोड़े को घर है कहना मैं कहा भाई तुम आ गल उ एयर तो दस दें मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करनी घर मेरे को कितने मैं ता ही तो लोन लेना जो घर लैन लिया तो ये तो बिल्कुल ऑन एयर क्लीयर दस रहे हो भी कोई घर है नहीं है डजेंट मैटर तुम्हें घर होना कोई जरूरी नहीं तुम चाहे बेसमेंट भी रह रहे हो तो भी लोन लै सकते हो कोई कार होना कोई जरूरी नहीं कार तुहाडे कोल हैगी है नहीं हैगी तो भी कोई गल नहीं तुम चाहे कल पीआर हो तो भी तुम पीआर कार्ड तुहाडे कोल हैगा तुम पीआर है एटलीस्ट तो तुम ये लोन लै सकते हो ताकि इतने ग्रो कर सको ये कोई होर हिडन चीज तो नहीं हैगी जी बंदा बाद कॉल करे पुछण भी अच्छा आ है फिर मिलना जी।
1: बिल्कुल जी इसमें कुछ भी हिडन नहीं है क्योंकि क्रेडिट चेक नहीं है इसलिए ये नहीं कहते आपका क्रेडिट इतना होना चाहिए क्योंकि क्रेडिट स्कोर 0 भी तो भी आप एलिजिबल है गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है बैंक नहीं दे रहा और पेमेंट भी 2.5 साल बाद स्टार्ट है 15 साल में आप उसे पे करते हैं शुरू में ब्याज 0% है पैसे को कहीं भी लगा सकते हैं मतलब 4-5 ऐसी कुंडी है इसमें जो आप मतलब कहीं नहीं मिलेगी 0% पे लोन कहीं भी खर्च सकते हैं 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट है बताइए
0: एलिजिबल हो सकते हो 437-264-3175 437-264-3175 ते तुसी कॉल कर लो तुहानू दस देंगे कि तुसी किन्ने लोन लई एलिजिबल हो सकते हो 30 दिन तो 90 दिनों के मोस्टली लोन तुहाडे अकाउंट के आऊगा तो तुसी इन्हां नू बाद च लमसम सिर्फ $200 पे करना वह भी जदों पैसे तुहाडे अकाउंट के आ गए वो पैसे तुसी जिथे मर्जी वरते हो तो ऑनलाइन क्लास ने जिहड़ी वो तुसी घरों बैठे बिठाए ला सकते हो 437-264-3175 बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows

ते आशा सी कमानी आला बत्ता सी ठियानी आला चढ़दी जवानी आला किन्ना सोना टाइम सी हो माई वाली पट्ठी का।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक का कम हो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डिया लैके जाना रिपेयर रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दी व्हीकल्स ते भी काम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलैक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478

0: 78 रॉयल ऑटो सेंटर।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई होंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे होंदे हो जिसने तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।